कबाड़ी की बना हूँ। सिड़ सिड़ की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकमी था ही इदा सिड़ सिड़ की इथोनी नी दिवगा की इदा सिड़ सिड़ की हा नजा जा खानी नी दिवगा की जाबुनी हा नजा जा उखानी।